0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पा कूड़ मिया कूड़ बीबी खापोए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ उबे पूर नानक बखाने बेनती तुदवाच कूड़ कूड़ महला
1: सच्चा भजनी डरदै सच्चा होई

0: धरया सब कोए, सूतक क्यों कर रखे सूतक बबेर सोए, नानक सूतक एव ना उतरे, ज्ञान उतारे तोए महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जिव सुतकु, अखी सुतक वेखना परत्र परतन रूप,

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैमं, गुर प्रसाद बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मन, पर तख गुरु निस्तारे, जे सौ चंदा उग वह सूरज चढ़ हैं हजार, इते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार।

होर गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोए न मिट दात। गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोए न मिट दात। दंडौत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कारयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दा पावन शब्द भाई साहब जी पासो सरवन कीता। पावन शब्द दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकागर करदे हुए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा

निराली। महाराज कहिंदे गुरु की सिक्ख्या लै लो, मत लै लो, फिर गुरु की कृपा उहदे च ही है। ते जिन्हें गुरु कृपा लै लई ते प्रभु ते आई है, वह फिर प्रभु नूं ते आउंदे ने, वह फिर प्रभु नूं ते आउंदे आ। वह केवल तो केवल पूरे दे गुण गाउंदे आ, फिर वह किसी उहदा ध्यान किसी दूजे वल जांदा ही नहीं। जिन्हें गुर लै लिया गुरु कोलों, जिन्हें मत लै लई, वह फिर केवल तो केवल प्रभु नूं ते आउंदा है। भावें दुख आ जाए, सुख आ जाए, खुशी गम आ जाए,

0: मैंने गुरु, संग मैंने संगी, संगी कौन ने? संगत। गुरु संगत विच जिहड़ा अमृत दिता जा रहा है ना, नाम दा अमृत पीवो सदा चिर जीवो, और रोज अमृत वंडिया जा रहा है। रोज अमृत वेले आसा की वार दा कीर्तन शुरू हो जांदा, अमृत ही पियाया जा रहा है, पियो। ये शब्द विचार विच अमृत पियाया जा रहा है, पिए। फिर हुक्म है, फिर सारा दिन कीर्तन चलना है, सारा दिन अमृत वंडिया जा रहा है, पियो आके शब्द विचों अमृत रस पियो आके। ये नहीं कि कदे कदे, जिहड़े खंडे दी पौल भी है वो देखो इस अस्थान ते हर महीने पहले एतवार नूं अमृत संचार हुंदा है। इस बार भी होना है 2 तरीक नूं अमृत संचार होना है, अमृत दा बाटा जिहड़ा वो तैयार होना है, ते अमृत अबलाखियां ने अमृत पीना है। अरदास करो कि उस दिन साडा जिहड़े हजे अमृत खंडे दी पौल नहीं लई उन्हां दा मन मन जाए, ते वो भी अमृत बलाखी बन के अमृत संचार वाले दिन अमृत पी लैन। पर जिहड़ा रोज अमृत वरताया जा रहा है, रोज अमृत वेले तो लैके रात तक अमृत ही अमृत शब्द नाल वंडिया जा रहा है, ये पीना है। ये किदां पीना है? साध संग गुरु की संगत करके, शब्द की संगत करके। बाणी गुरु, गुरु है बाणी की संगत करके। महाराज कहिंदे आ अमृत जिहड़ा है वह पीवो। इस अमृत नूं पीण नाल की होएगा? ओ गुरु पातशाह जी दसदे हन,
1: ना जी अमरै न कवहू सिजै।
0: जिहड़ा आ अमृत जिहड़ा साडी जिंद नूं सदा लई अमर कर देगा। शरीर अमर नहीं होना, शरीर ने नहीं अमर होना, ये जन्मंग ता मरनंग है। जन्मता बाद मौत है, उपजना ते बिनसना है। जिहड़ा अमर होना है वह जिंद ने होना है, जीव आत्मा ने होना है, जीव इस्त्री ने होना है, सुहागण बन के वह आ अमृत पी के होना है, बाणी का शब्द का रस पी के। महाराज कहिंदे जदों तुसी ये रस पियोगे अमृत का, फिर ना जीओ मरै। ये जड़ी जिंद है ना, ये जम्मण मरण दे विच नहीं पाएगी। शरीर विच पैंदी है ना जिंद, हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। केड़ा वाजा वजदा है? शरीर दा श्वासा नाल वाजा वज रहा है, क्योंकि हारमोनीयम भी हवा भरांगे ताई वजेगा। जे असी पखा मार के हवा भरांगे सुर चों आवाज ताई, बांसरी दे विच भी हवा भरांगे ताई बांसरी वजेगी। ये श्वास ने जिहदे नाल ये शरीर दा भांडा जिहड़ा ये चलदा सुणदा बोलदा है। इहदे अंदर जिंद रखी हुई है जिहड़ी जम्मण, शरीर ने ना जम्मणा, देखो ये जिंद ने ना जम्मणा ना मरना, वो ते आवागमन च है, आ गई चली गई आ गई चली गई। ये जिहड़ा शरीर मिलिया वो जम्मण मरना है। ये जिंद जम्मण ते मरन विच पई हुई है। जिहड़ा जिहड़ा शरीर मिल रहा वह जम रहा मर रहा, जम रहा मर रहा। पर जदों ही अमृत रस पी लेगी जिंद, किवें पीवेगी? मन दे राही। मन जदों अमृत रस लैके निज घर जाएगा तो यह अमर हो जानी है सदा वास्ते जिंद जीव आत्मा। पर इनू अमृत रस नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि हजे मन ते विकारा दा रस लै रहा है, काम दा क्रोध दा लोभ दा मोह दा हंकार दा, ये विकारा दा रस लै रहा है। इसलिए अंदर जड़ी जिंद सी वह मुरझा गई, कुमला गई, रस नहीं ना मिलिया। फुल खिड़िया अज देखो 2 दिन उहदे च पानी ना पाओ तो मुरझा जाणा है। वो अंदर नाम जल ना गया, अमृत ना गया, अंदर दी जिंद कुमला जाएगी। पर जिन्हें अमृत पी लिया, साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरे ना कबहू छिजै। छिजै मतलब छिज जाना, कमजोर हो जाना। ये शरीर छिज रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है,

संकलित आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास ही सहाय अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे करनो निदावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दीदारता ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत शीश दित्ते बंद बंद कटाए

आवे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रसियारे आए ते देग तेग फतेह। दिर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रक्त दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दान सरदान नाम दान। श्री अमृत सरजिया दे दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मनीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दे दार सेवा संभाल दा दान। अपने खालसा जी नूं बख्शो हे निमाने आंदे मान ताने आंदे तान। न्योटियां दी ओट सचे पिता वाहिगुरू।

जीविके अमृत वेले दीवान सजाए गए सजे हुए दीवानंदर श्री आसा दीवार दि शब्द कीर्तना गुरवाणी लड़ीवार कथा विचारा से पौड़िया नंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनिया यात्रावा सफल करनिया धरो घरों गुरु सिखी जीवना नाम बानी दिया दातां बख्शनिया चढ़ दिया कलावा तंदुरुस्तियां बख्शनिया गुरमत अनुसार

तरस करना आउन वाला समा आप जियां दी जाद आप जियां दे प्रेम दे विच ही बतीत करवावना आप जियां दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो जो जी सके आप जियां दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे आप जी करो कृपा।

सिर दीज कान न की जय सो कोटल गुरु सेवियन सहज सुपाई दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

सगल समग्री तुमर सुतर तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर्क।

गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे शबद कीर्तन से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनी यात्रावा।

पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सब के हाजिर है। धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। जो जी सके आप जिया दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन जीवन दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवना। नानक नाम चढ़दी कलां

कि सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा। खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे, बोले सोनहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

भस्वकर हर जस लिखन ना जाए सजन सचा पात साहो सिर सहांदे साहो जिस पास बैठया सोहिया सबना गिसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब।

0: बलहारी कुदरत वसया तिरंत ना जाए लिख रहा।
1: जात मह जोत, जोत मह जाता, अकाल कला भरपूर रहया।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਚ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਧਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨੋ ਦੇਨੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿੰਹ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੌਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਦਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨੇ ਮਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਦਾਨ
ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पर भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहीं तुद जी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख मिसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक पैखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना तू पार बिरंबे अंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ते आवही तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पए जैनों हर ते आया जी तिन तूपी जम की फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी तिन का भौ सब भगवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेयंत बेयंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापहीं जपहीं बैंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मिंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नौ कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माही तुझ बिंदु जा कोई नाही जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़या संयोगी मेल जिस नौ तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने
जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोई। तू कर कर वेखे जाने ही सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर्व रड़े, पहले निवासा पानी पावक तिन्हे किया। पंकजों मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले। मान एक न चेतस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गले आ रहा। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणमत नानक तिन की शरना, जे ना तू ना ही विसरया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, संजाम लाग पवजल तरन कै। जन्म प्रथा जा रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा। शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जन्या हर राया, कोहु नानक हम नीच करमा। शरण परे की रखो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हद रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काबो हो। आभाद मुहे बचावो हो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सबेरन को आए संगरिये, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिये। चुन चुन शतर हमारे मारिये, आप हाथ है मुझे उबरिए। मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा। श्रियास्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मुहे रखण हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपधरा। काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार हैं तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो। देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, न
नमस्कार तिसहि को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बध कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के बड़ बड़ की जन्ने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख कर तोह कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे थर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत वेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब, ताका मूड़ उचारत पिता, डाकू पीव न पावत बिद्दा, ताको कर पाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ पीत न जानत, महादेव को कहत सदाशिव, ड्रंकार का चीनत नय भेव, आप आपनी बुध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुपस रूपा, रंग पयो राव कहीं भूपा, अंडज रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आजुग रूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे वारे असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण गाता, ये अस्तु तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवाए मरे, पुरख जान पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को एक बार दे है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हुई ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह शबै सकेरा कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहें उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग गे हैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठो मोह सहाई, दुष्ट दुख दे ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो वारी, सरठो मोहो सहाई, दुष्ट दुख दे ले हो बचाई,
सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को अंक तरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक नाम मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाय बहुपेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पाण कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तोहारो द्वार बाहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन मजियां वाधाइयां राग रतन परवार प्रियां शब्द गावन आइयां शब्दो ता गावो हरि केरा मान जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच साहेबा क्या नहीं घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन मसावे नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा सच नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया एहे वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाज पंच शब्द तित कर सभागे कर सभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया थुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित घर अनहद बाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र
सतगुर रहा भर भूरे बिनोवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर भूरे बिनावंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदा मणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अदारो जे को खावे जे को पंचाय तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग त्रिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जत नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सत

0: आत्मा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पहिरदास जियो पिंड सब

सोरठ महला पंजवां गुरपुर कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा। गुरु नानक

अंधगू जुग अटल, चबर शतर तख्त दे मलक, वलिए कुल आलम, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर रात्रि वेले दे दीवाना अंदर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले हो सतगुरु जी ने बड़ा तरस किया है अपने पावन चरणा कमलों पास जुड़ के बैठन का सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वड़ियो, जिथे सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच सरवण करदे आ, बाणी दा रस बाणी दा आनंद मान रहे सां। जो लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो, उन्हां चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दियां विचारां नाल सांझ पाईए। कल दे दीवाना अंदर आप संगत ने इथों कु तक इतिहास सतगुरु जी का सरवण किया सी कि भाई मान सिंह जी जो गुरु का निशान गढ़ अपने हाथ विच कृपान लाए शमशीर लाए वैरियां दा मुकाबला करदे ने, हज़ारां दी गिणती दे विच जमतुल्ले भाऊ दी लाश चुकण वास्ते अगां वध के उहदे साथी आए, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उत्थों जमतुल्ले भाऊ दी लाश वो चुक के ले जा सकते। बड़ा घमसान होया, दिन दे तीन पैर जंग दे मैदान अंदर गुजर गए। जंग दी समाप्ति संध्या वेले, मतलब जंग बंद करन दे लई सारे पहाड़ी राजे उन्हां दे सिपाही उन्हां ने जोर अड्डी चोटी दा ला लिया, पर किसे दा जोर चलिया कोई नहीं, अपने अपने टिकाणियां ते चले गए। इधरों धन गुरु कलगीधर पातशाह दे सिख अपने अपने अस्थाना ते आ जाते हैं। उन्होंने आके फिर सारी वार्ता जिहड़ी उह सतगुरु पातशाह जी नूं दसी। मालक जी ने उन्हां सभनां दे उत्ते बड़ी कृपा वरताई सतगुरु जी ने, ते जिन्हां दे शरीरां उत्ते जख्म लगे गुरु पातशाह ने उन्हां नूं मलम पट्टी दा प्रबंध करके सुचज्जे ढंग दे नाल उन्हां दा इलाज सतगुरु पातशाह करवाउंदे, और जिन्हां ने शहादतां दे जाम पी ले उन्हां सारियां दा उत्थे बड़े प्यार सत्कार दे नाल संस्कार जिहड़ा है उह कीता जांदा है। ते इत्थों कता के इतिहास आप संगतां ने कल दे दीवाना अंदर सरवण कीता सी। अगां हुण संध्या वेले करके जंग एक वारी बंद कीती गई है, ते इस रात नूं हुण पहाड़ी राजे आपस विच की सलाह मशवरे करदे ने, सवेर होया उन्हां ने किवें व्यौतबंदी कीती है, ते इधरों धन गुरु कलगीधर पातशाह जी अपने सिखां दे उत्ते खालसे पंथ उत्ते किवें बख्शिशां करदे ने, आओ आपां इतिहास दे इन्हां अगलेरे पन्नियां नूं विचारन दा यतन करिए।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਸੱਖਣੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

चापगवन सगल समगरी तुम रूत्र तारी तुम थे ओसो तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी।

जीव दीन दर्द दुख पंजनो घट कर नाथे नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के सब साथ। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण न साको तू ठाकुर ऊच भगवाना सुख अटल गुरु सेवी है एन सह सुभाए दर्शन परसे जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु कह जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ सुरठ माला पंजवा गुरपुरे कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इशनान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए गुरपुरे कृपा तारी प्रभ पूरी लोच मारी कर इशनान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याइये अन दिन शुकरत करिये रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस्तत करो

जय कर कीरता खीय करते काय बिचारो तित कर गावो सोयला सवरे ओ शरण हारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोयला वारीत सोयले सदा सुख राव नित नित जिड़े समालियन देखै गा देवनहार त्रिदान कीमत ना पवै तिसदा ते कमण सुमार संबत सह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन आसी सड़िया जो हो वै साहिब समेल कर करियो पहुँचा सदने नित पवन सदना रा सिमरिय नानक से देवन राग आसा महला पहला छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होवे सो कर राख वडाई तो रहाओ विश्व चसिया कड़िया बैरा थिती वारी माओ आ सूरज को रोता नेक नान करते के केते वे सराग तनास्ती महला पहला गगन में थाल रव चांद दीपक अपने तार कमंडल जनक मोती धूप माले आन दो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पावखन्ना तेरी आरती अनाता शब्द वाजंत पेरी रहो सहस तव नैन नाल नैन तोए को सहस मूरत ननायक तोए सहस पद बिमल नानक पद गंद बिन सहस तव गांधे विचलत मोई सब मैं जोत जोत ऐ सोए तिसदे चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरांत लोभित मनो आनंद न मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारे कोय जाते त्रिनाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मनारले मंडल मंडाए कर साधु अंजली पुन वडाए कर डंडौत पुन वडाए रहाओ साकत साधना जान्या तनियंत्रो मैं खंडाए ज्यो ज्यो चले चुबै दुख पावे जमकाल सह से डंडाए हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पव खंडाए अविनाशी पुर

पंजवा करो बेनती सुन मेरी मीता संत टहड़ की बेला इहां खाट चढ़ो अरला आग्ञा बसन सहेला आओ कटै दिन सरे नारी मन गुरमलका सवारी नहाओ ए संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे रस कातक तत न जानी जा कुवाए सोई ब्याजोर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे बौड़ न होए गो फेरा।

0: कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माण्यो, गावे गुण बरन चार खट दर्शन, ब्रह्मा दिक सिमरंथ गुणा, गावे गुण शेष सहस जे बारस, आद अंत लिव लाग तुणा, गावे गुण महादेव बैरागी, जिन ध्यान निरंतर जानेओ, कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माण्यो,
1: राज जोग माण्यो, बस्यो निर्वैर रिदंतर, सृष्ट सगल उदरी, नाम ले तरयो निरंतर, गुण गावे सनकाद, आद जनकाद जुग है लग, तन तन गुर तन, तन तन गुर तन, जन्म सक्याथ पलो जग, पातालपुरी जय।

दास भगत जय देव तिरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावह समलोचन भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देव परीक्षित गुण रवे गौत

है पायाल। भगत नागाद पुयंगम महादियो गुण रवे, सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास। जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे, जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण।

अमे दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसै।

एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी है।

प्रिय सज्जन सचा पातशाह सिर शाह देशाह जिस पास बैठियो सोहिए सबना दावेशाह जिस पास बैठियो सोहिए

प्रभ की अकथ कहानी जन बोल है अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सर्वे कायनात दे सांझे रहबर जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त तथा वक्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सम्राट गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान सात संगत जी आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले दी दीवाना अंदर हाजरियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का अज का पावन मुखवाक सोरठ राग अंदर पंजवें पातशाह शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते ने जो सतगुरु जी की बाणी पावन अंग 625 अते 626 उपर सुभायमान है। सतगुरु जी कृपा कर अपने हुक्म अनुसार जीवन जीण की समर्था सूझ बख्शन जी। आओ अज दे एह पावन बचन अपने हिरदे अंदर वसाउण दा यतन करिए। सोरठ महला पंजवां